0: Hello, Air India.
1: Air India.
0: What? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. क्या बात है? किसी ने फोन तो बनाया कि फ्लाइट नंबर 125 में टाइम बम गिर गया. What?
2: No, that's it.

0: लेकिन आप हैवंट यू ऑलरेडी चेक्ड इन?
1: नहीं, मैं तो अभी नहीं। ये देखिए मेरा टिकट।
0: स्ट्रेंज, बट आई एम सॉरी, 125 हैज टेकन ऑफ।